नाल ओ जेड़े लोटे वेच लोग पैसे पा रहे सन ओ लुका दिता। भाई साहब, भाई गुरदास ने बड़ी प्यारी बात कही। भाई साहब कहंदे ने

बंदे नूं अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वह झगड़े ते उतर आउंदा है, और तां पेश जांदी कोई नहीं। जोगियां ने गुरु नानक बाबा नाल बहस करनी शुरू कर दित्ती। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे ने, कैसी बात है,

ओदे ते चंबेली दा फुल रख दिता। जे वड़ा फुल तर दे ते हो सकता सी दूध डुल जांदा। गरीब नवाज पातशाह ने उन्हां नूं इशारे नाल समझा दिता, भई हे फकीरो हे पीरो, जिवें ए दूध उपर चंबेली दे फुल दा कोई असर नहीं होया, दूध ओदा ही है। मैं तुहाडे विच आ के ते ए तुहानूं महसूस नहीं होण देंगा भई मैं इत्थे कोई रहण आया या पीर बनन आया, नहीं, मैं ते तुहानूं

गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी जिन्होंने 12 साल सेवा की थी। 72 साल दी उम्र विच बाबा अमरदास जी जदों गुरु अंगद देव पातशाह दे कोल आए ते जदों दर्शन कीता ते मन मन गया। आ मन जिथे मन्ना होंदे ना ओ उथे एक नजर ते ही मन जांदे, पहली नजर ते ही मन जांदे। जदों बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते आख्या मैं गुरु दी पाल कर रहा सां ते अज मैनू गुरु प्राप्त हो गए। उस दिन तो बाद बाबा अमरदास जी अपने घर नहीं गए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी सेवा विच लग गए। रोज गागर दी सेवा करनी, खंडूर साहब तो गागर लैनी, 5 मील तुरदे हुए ब्यासा नदी

पहले पैरे आपने उठ के तीजे पैरे उठ के तुर पैना, क्योंकि पहले दो पैर आप कीर्तन नाम विच जुड़े रहिंदे ते जदों तीजा पैर

चुक चुक जा रहे हैं। सात सगत बोलो श्री, क्योंकि जितना फल लगता है टैणी नू, ओ टैणी उतनी चुकदी चली जाती है। एडी सेवा करके 12 साल सेवा की गुरु अमरदास जी ने, ते फिर की होए गुरु नानक दा रूप बन गए। सत्संग

जे हुक्म होया इत रहबर नू एक पैगंबर नू अंगयारियां ते चलन दा सामने अंगारे वेखे घबरा उठिया पुकार कीती अपने खुदा दे चरणा विच हे परमात्मा ए अंगारे इन्हां ते मैं चलांगा ते मैं सड़ जावांगा ए फुल बन जाण

और चंदू ने अपना बदला लिया। ऐसी एक गाथा आउंदी है, पर असलियत ए है कि हुकूमत नहीं सी चाहुंदी सच दी आवाज बुलंद होवे। हुकूमत नहीं सी चाहुंदी कि लोग सच दी आवाज नू सुनन ते उस सच दे उत्ते चलन, क्योंकि सच उत्ते जे प्रजा चल पई ते बादशाह नू फिर हुकूमत करनी बड़ी औखी हो जांदी है। उन्हें तौज के जहांगीर विच स्पष्ट लिखिया है कि मैं चाहुंदा हां ए जो झूठ दी दुकान गुरु अर्जन देव चला रहे ने गुरु नानक दे पंजवें वारस, जिस दे उत्ते कुछ हिंदू और कुछ सिरफुरे मुसलमान भी ओदा उपदेश सुनन वास्ते जांदे ने, मैं चाहुंदा हां कि ए दुकान बंद कर दित्ती जावे, जिस तों स्पष्ट नजर आउंदा है कि समय दी हकूमत नहीं सी चाहुंदी कि गुरु अर्जन दे रूप विच सच दी आवाज लोकां दे कन्नां तक पहुंचे। उस सच दी आवाज नूं बंद करना चाहुंदा सी और इसका इल्जाम भी दूजियां दे सिर ते मढ़ना चाहुंदा सी। चंदू दे हवाले करके आप ओ कश्मीर वल चला गया। चंदू ने ईरखावश होके ए जुलम करने शुरू कीते। चाहुंदा सी कि किवें गुरु अर्जन दे अंदर क्रोध दी अगन भड़क उठे, इहदा सिदक डोल जाए, पर धन गुरु अर्जन देव पातशाह शांति दे पुंज जिन्हां ने अपना पवित्र शरीर ते बलिदान दे दिता, पर सिदक नहीं हारिया, शहीदी महल दी नींह रखण लगिया हजूर ने सब तो पहला अपना शरीर एदे विच लाया, ओदे उत्ते ए शहीदी महल दी उसारी होई। आप उस अकाल पुरख दे भाणे नूं मनण दा संदेश

अकाल मूर्त अजूनी सहभंग और प्रसाद जब आप सच युगा सच है भी सच नानक कोशी भी सच चक्र के निर्वर्ण जात हर पात नहिंजे रूप रंग अरगी पीप कुकर सत्य है अचल मूर्तन हो प्रकाश अमित तूज के हिंजय खूब इंद्र इंद्राम शाहु शाहान गणिजय फिर भ्रमण में ही सुरनारा सुर नीत नीत बंटन कह तब सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम वर्ण समझ सतपुरे आयु शरण तुहारी मिले सुख नाम हर शोभा चिंता लाए हमारी और न सूझ दूजी ठार आर पर तो द्वारी लिखा छोड़िया लिखा छूट है हम निर्गुण ले हो वारी सर्वक्षण सदा मेरवाना सब नाम आवारी नानक दास संत पाछा करू राख लियु ए बारी सतगुर हुई दयाल ता श्रद्धा पूरिया सतगुर हुई दयाल ना कम हो चूरिया सतगुर हुई दयाल ता दुख न जानिया सतगुर हुई दयाल ता हर रंग मानिया सतगुर हुई दयाल ता जम का डर के हा सतगुर हुई दयाल ता सद ही सुख दया सतगुर हुई दयाल ता नौ निध पाइया सतगुर हुई दयाल

मिल आप गवाया। हाँ सदके तिन्ना गुर सिखा करन उदासी अंदर माया। हाँ सदके तिन्ना गुर सिखा गुरमत गुर

मन परगाश है पिरम प्याला अजर गिरंदे गुर सिख मन प्रगाश है पिरम प्याला अजर जरंदे पार ब्रह्म पूरन ब्रह्म ब्रह्म विवेकी ध्यान धरंदे शब्द सुरत लिव

जाए अंदर दरियाए नमन दे सहज समाध अगाध विच एक मन हो गुर जाप जपन दे मथे टिके लाल लाए साध संगत चल जाए बहंदे शब्द सुरत लिव लीन होए सत गुर बाणी गाव सुनंदे पाए भगत भय वर्तमान।

ऐसा गुरसिख जिसका जीवन सेवा सिमरन परोपकारी है, भाई साहब कहते हैं कि बेशक उसनू कह दियो जिहड़े जोड़े उसने पहरे हैं वह उतार देवे, पता नहीं किस चमड़े दे होंगे। आ मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े बना के ऐसे गुरसिख नू पहना दियो जिसका ऐसा जीवन है। गुरसिखी गुरसिख सुन अंदरों सियाणा बाहरों भोला, शब्द सुरत सावधान है बिन गुर शब्द ना सुने ही बोला। जिथे गुरु की बाणी दी विचार होंदी है झट पहुंच के कन दे के सुनदा है, ते जिथे निंदिया चुगली हो रही है उथों कन्नी कतरा जांदा है, क्योंकि निंदिया चुगली सुनन नाल पुन सड़ जांदे हन। सत संगत विच बह के गुरु की बाणी सुनन नाल पुन वध जांदे हन। इसलिए गुरु के सिख दा ऐसा जीवन भाई साहब कहंदे हन, बेशक मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े ऐसे गुरसिख नु

अंतरजोत राम परगासा गुरमुख बिरले जाने भगत कबीर साहब का उचारिया होया ए शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के विच दर्ज है।

शब्द तीन बंधा दे विच है कि परमेश्वर दा जद मिलाप हुंदा है फिर इंसान दी अवस्था की हुंदी है और परमेश्वर दा मिलाप गुरु करांदा है।

संसार अमृत दी एक बगीची है, जो उस पूर्ण परमात्मा ने बनाई है। जिमें एक पौरा फुल दे रस विच मस्त होके फुल दियां खिड़ियां पत्तियां विच अपने आप नूं जा बनाउंदा है, जिमें कोई पंछी अपने खंभां नाल हवा नूं उलारा दे के आकाश विच उड़दा है, तिवें ओ गुरमुख नाम रस विच मस्त होके पूर्ण खड़ाऊ नूं अपने हिरदे विच टिकांदा है ते सोच मंडल विच हुलारा दे के प्रभु चरणा विच उड़ारी लांदा है। उस गुरमुख दी उस अडोल अफुर अवस्था विच उस दे अंदर कोमलता रूप मानो एक कोमल बूटा उगदा है, जो उस दे शरीर दी तृष्णा नूं सुका दिंदा है। कबीर साहब कहिंदे ने, मैं उस इंसान दा उस गुरमुख दा दास हां जिसने अपने अंदर उग्या होया एक कोमल बूटा देखिया। साध संगत, ए ब्रह्म ज्ञान दी अवस्था दा शब्द है जेड़ा इस कहानी नूं जान लैंदा है कि परमेश्वर दे नाल गुरु मेल करांदा है, और परमेश्वर दे नाल जद मेल हो जाए ते फिर ओ इंसान की समझ

परमेश्वर का रूप नहीं समझता। इसे वास्ते ये लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होंगे। इसे वास्ते इंसान इंसान के नाल नफरत करता है। कबीर साहब कह रहे हैं, अगर पूरा गुरु मिल जाए वो इन्हों गलों की सोझी कराता है कि ए इंसान, यह संसार परमेश्वर का बनाया होया है, ओदे बनाए हुए जीवा नाल प्यार कर, कोई भी बेगाना नहीं। पर इन्हों गलों का उदों पता लगता है जदों अंतर जोत राम प्रगासा, जदों अंदर राम नाम की जोत जग जाए। पर यह जोत किस विरले दे अंदर जगदी है, ते कबीर साहब ने कह दिता, जानी जानी रे राजा राम की कहानी। मैं हुण इस कहानी नू जान ले है कि इह सारा संसार परमेश्वर दा बनाया होया है, इसे वास्ते ते मैनू कोई बेगाना नजर नहीं आंदा।

कृपा कीती ज्ञान अंजन अंजन कहंदे ने सुरमा गुरु ने ज्ञान दा ऐसा सुरमा दिता कि मैनू इस गल दी सोझी हो गई राम नाम तो बगैर जीवन किसे काम दा नहीं।

मैं सिमरन करके ये गल जान ली है कि सिमरन करन दे नाल जिथे दुखां दा नाश हुंदा है उथे जग जीवन सिंह जीव समाना जीवन देने वाला जेड़ा परमात्मा है ओ दे नाल जीव दा मिलाप हो जांदा है और ओ इंसान इस कहानी नू जान लैंदा है सिमरन सदका कि सारे विच परमेश्वर दा नूर है ओदी जोत है।

ता तृष्णा रूपी जल सूख गया, मन दी हर तृष्णा खत्म हो गई, क्योंकि नाम जिहड़ा है यह सारिया भुखा तृष्णावां खत्म कर देंदा। हर इंसान एक चीज मिले तो दूसरे की इच्छा मन विच पैदा होती है, हर इंसान भज रहे जिद को एक चीज है उसनु दूसरी चीज की लोड़ है। एक देश का जी राजा है, राजा बन के भी उन्हें तसली नहीं, कुछ होर चंद है। कोई वजीर है, वजीरी लेके भी वह रजिया नहीं, कुछ होर चंद है। हर इंसान भज रहे है, पर सतगुरु जी कह रहे हैं सुख नाही बहुते धन खाटे, सुख बहुती माया विच भी

कितना चानना कितनी रोशनी होंदी है एक सूरज दे चढ़न ते। अगर हजार सूरज भी चढ़ पवे सौ चंद्रमा भी रोशनी देवे तावी मन दे विच हनेरा रहिंदा है अगर मन विच ज्ञान नहीं। कई बार आपां देखदे हां एयर कंडीशन कमरे होंदे ने पर अंदर बैठा इंसान सड़ रहा होंदा है गुस्से दे नाल उहदे मन नूं चैन नहीं होंदा। रोशनी विच इंसान बैठा होवे अंधेरे विच होंदा है अंधेरा केड़ा अज्ञान दा। अज्ञान की है? अज्ञान यह है कि दूसरे का हक मैं खावा अपनी सुख वास्ते दूसरे का हक खाना दूसरे नु दुख देना यह है अज्ञान। ते ज्ञान की है? ज्ञान यह है कि भाई सारे विच परमेश्वर है सारे विच खुदा है वाहेगुरु है जे सारे विच वो है फिर ते मैं सारे नाल प्यार करांगा। इन्हां गल्लां दी सोझी

हजार सूरज होवे, सौ चंद्रमा होवे, पर जे गुरु नहीं मिलिया तां इस चाननी दा क्या फायदा, जे मन दे विच ज्ञान नहीं, मन विच अज्ञान है।

परमेश्वर दी कहानी दा पता नहीं लगदा। गुरु परमेश्वर दी कहानी दसदा है कि सारे विच परमेश्वर है, ते जेडे गुरु दा उपदेश सुनदे ने ओ फिर इस कहानी नू जान लैंदे ने कि सारे विच

ता विष्णु भगवान ने इन्हां दे बंधन कटे तंदुए नूं भी मुक्त कीता, इस हाथी नूं भी मुक्त कीता के दोनों भरा होता ते ब्रह्मा। पूरे गुरु की प्राप्ति नहीं सी, भगति करदे सन पर माया दा लालच मन विच हटिया नहीं सी, इसे वास्ते इन्हां नूं इतना दुख भोगना पिया। और जद भगवान मिलिया ते फिर मुक्ति नूं प्राप्त होया। इसे शब्द दे विच धन गुरु रामदास जी जिथे इन्हां दोनों भरावां दा जिक्र करदे ने कि माया पिछे सराप दे के दोनों ने जोना पाईया, दुख हो गया पर फिर सिमरन कीता ते भगवान ने इन्हां दा पार उतारा कीता। इसे शब्द विच सतगुरु जी फरमांदे हन, बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे है। भाई इन्हां कथा कहानियां नूं सुन, गुरु दी बाणी ये कथा कहानियां तेनूं दस रही है, इन्हां तू सिख्या लै। झगड़ना फिर माया पिछे झगड़ा, पर माया बड़ी मिठी है। साहिब जी फरमांदे ने, पापा बाजों होवे नहीं मोया साथ ना जाई। पापा तो बगैर माया बहुती कट्टी नहीं होंदी, ते जद इंसान मरदा है ते ए नाल भी नहीं जाने। सतगुरु जी फरमा रहे ने, सुन ए बाण, मन विच प्यार रख, जिन्नी भज नठ माया वास्ते करदा है अगर सिमरन करें ते सिमरन सदका तेरी कमाई विच बरकत पवेगी। ए माया ते कुछ भी नहीं, सिमरन करेगा ते परमेश्वर दी जोत तेरे अंदर जग जाएगी, ओदे नाम दा प्रकाश हो जाएगा ते फिर तू जिधर भी देखेगा तेनू परमेश्वर नजर आवेगा। इन्हां भगतां दी तरह पर एक वारी तू भी कह उठेगा, ऐ भाई जानी जानी रे राजा राम की कहानी। मैं भी परमेश्वर दी कहानी नूं जान लिया है कि ये संसार परमेश्वर दी बनाई हुई खेड है।

आज हम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते हैं, उनके चरणों की छो प्राप्त होती है। कितने बड़े भाग होते हमारे, लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

जात का है, गुरु सूरज के माफिक है, ये बात अलग है। हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं, ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद, दरवाजे खोल।

मज पे साध सन हम चुना गए मज पे साध सन कज मोहब्बत बा खुदा दा रंग रंग कज मोहब्बत

भलोक सियाने तू बेअंत को विरला जाने को विरला जाने गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहुरंगी सब तेरे न्यार तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महा शिव जो करी तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा

लक्षण बदल गए, सुलक्षणे हो गए, शुभ लक्षण हो गए। लक्षण कहिंदे ने जो कुछ नजर आउंदा हो। मनुख दी अंदर दी रहनी जिस वेले बाहर आ जांदी है लक्षण कहाउंदी। सतगुरु क्योंकि मनुख दी रहनी सुधार देंदे ने, इस करके जबान मिठी हो गई लक्षण चंगा है, चाल ठीक हो गई करते पुरख ताल दिवाया, जिंदगी ताल विच आ गई, बेताली जिंदगी ताल विच आ गई, चाल ठीक हो गई। और एक कहने लक्षण जेड़े ने रफ्तार दस्तार गुफ्तार यही तो गल्लां होंदियां ने जिन्हां तो बंदा पछाणिया जांदा। पग किहो जी बनदा है, भाव इस नूं अपने सजन सजाउण दा ख्याल भी है कि नहीं। और यही वजह है कि लोग तां कहिंदे ने पग बननी है, लेकिन गुरु का सिख कहिंदा दस्तार सजाउणी है, क्योंकि इहनूं बड़ा ख्याल है कि मेरे सजन दा सवाल है, मैं सजिया सजाया गया ते सज के रहना मेरा काम। दस्तार तो पता लगता है इस बंदे दी रहनी बहनी की है, भाव वस्त्र पाउण तो रहनी बहनी तो मनुख दे अंदर दी सफाई दा ते अपने आप नूं बना के रखण दी रुचि दा पता लगदा, चाल तो पता लगदा है इहनूं तुरना आउंदा है, चाल तो ही चाल चलण दा भी पता लगदा, ते गुफ्तार तो जबान तो बोलण तो भी पता लगदा है इस दे अंदर की है। जो जीए होए सो उगवे, जबान तो उही निकलेगा जो अंदर है, अंदर बाणी है ते मुंह बाणी निकलेगी, अंदर प्यार है ते मुंह प्यार निकलेगा, अंदर नफरत है ते मुंह गाला निकलेगी। सतगुरु की कृपा दे नाल मनुख दे लक्षण बदलते, पर उदों बदलते जदों गुरु के मार्ग पै जाए।

हालात बदल गए, ख्यालात बदल गए, लक्षण बदल गए, शुभ मार्ग पै गए सतगुरु ने पा लिया, मार्ग पाए उद्यान में भटकदिया फिरदिया नू, उजाड़ा विच भटकदिया नू, सतगुरु ने गुरमत दे राह ते पा के जीवन दा ऐसा प्यारा भेत समझाया। हालात सुहावने होंदे चले गए, जदों ख्यालात सुहावने हो जान, ख्यालात नेक हो जान ते हालात भी चंगे हो जान। हालात बंदा आप ही खराब कर लैंदा, दोष हालात नू देंदा है, लेकिन हालात नू खराब करना मनुख दे अपने कमां दे सामने हो। गुरु के लड़ लग जाइए लक्षण बदल जाते, हालात भी बदल जाते, हालात भी चंगे हो जाते। वो जेडे हालात महाराज ने इत्थे जिक्र किया है, प्रभु हिरदे च वस गया, काम क्रोध लोभ मोह हंकार नठ उठे, पंच चोर आगे भागे, गुणा दी पूंजी पूंजी साबत कणो लाभ, प्रे शोभा सेत हिरदे घर विच शोभा शोभा हो गई, वड्याईयां ही वड्याईयां आ गईयां। और सतगुरु ने तो बड़ी कृपा की, दूण चौनी दे वड्याई शोभा नीता नी, मेरो गुर रखवारो मीत, बुराइयां तो मैनू रख लैण वाला मेरा सतगुरु, मेरा मित्र, मेरा अपना, मेरा सखा, उसने बड़ी कृपा की, मैनू बुराइयां तो बचा के धर्म दे मार्ग ते पा के वड्याईयां दे राह पाया। दून चौनी दे वड्याई शोभा नीता नीत, नित नित वधदी शोभा, जिसनू अपने ता प्रवान करन सो करन, ओपरिया ने भी सिर मथे प्रवान किया, नहीं दुश्मना ने भी सिर मथे प्रवान किया। आपां पढ़दे आं इतिहास, साडे अपने कोल तां लिखिया ही ना गया, लिखण दा वक्त ही नहीं सी, अपनी रिपोर्ट आप तैयार करन दा समां ही नहीं सी खालसे सिख कोल, अपनी गल लिखण दा समां ही ना मिलिया। गुरी कु गुरु की गल नूं समझदे आं ते कमाउंदे आं, समें दीआं हकूमतां दे नाल टक्करां लैंदे आं, कुरबानियां देंदे आं, सेवा कमाउंदे आं, त्याग करदे आं। इस नूं इतनी फुरसत नहीं लिखी कि मैं की कर रहा कि लिख भी देवां, लिखना दूजिआं नूं पिआ, ते ओह निष्पक्ष नहीं सन, लिखण वाले निरपक्ष ना रह सके। जे किसी साध ने उदासी ने लिखिया कि उन्होंने भी रखता सी ये मत, क्योंकि गुरमत जेड़ी है पाखंड ते बहुत वड्डी चोट है, ते जिने जिस वेले उन्होंने लिखिया अपनी मनमत ते अपनी दम वाली बिरती ते पैंदी सट नूं ओह कदों ठीक तरह लिखणगे, उन्होंने ईमानदारी नहीं वरती, ते जिन्हां नाल सिधियां टक्करां लगियां ही सन उन्होंने की लिखना सी, उन्हें तो लिखण लगे इतिहास लिखिया है, ते सिख ना लिख के सग लिखते। लेकिन एक बड़ी कमाल की गल, उधरों सग भी कहिंदे, कुत्ता भी कहिंदे, गल करन लगे बंदियां वांगू नहीं करते, दुश्मन बन के ही गल करते, लेकिन उन्होंने यह पता नहीं लगता कि असीं जिहदे नाल गल करते पाए हां गल करने हां कि शोभा कर रहे हैं, इन्हां दा इतिहास लिख रहे हैं कि इन्हां दी वड्याई कर रहे हैं। कट्टण मुसलमान लिखारियां ने भी जिस वेले सिखां दे बारे लिखिया है, ते लिखदिया लिखदिया भुल गए ने कि असी इन्हां दे औगण दस रहे हैं कि गुण

स्वाति बूंद दे पीछे प्या तड़पदा है आसमान वल, मुंह खोल के ते पपियो पपिया प्या करदा है, तरले करदा है, जोदड़ियां करदा है, मेरे पातशाह ते स्वाति बूंद मेरे मुख विच पा देवे ते मैं तृप्त हो जाऊं। सब आंदे ने प्यारिया किते एदां दी प्रीत कर लै, एदां दा स्नेह कर लै, एदां दे गुरु नाल प्यार पा लै, फिर ते तेरे जीवन दी गल बन सकती है, नहीं ते तेरा जीवन अधूरा है।

साहब फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पाछा तू मेरे ते कृपा कर, किड़ी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याछा,

गुरु नानक दी मोर लाके धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गावां बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

साहब जी रचना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह बयान करदे होए अपने रचना तो कृपा करदे ने ते आंदे ने

आश है तेरे दीदार दी, निर्यमर कह कर कृपा मेरे दे। को ऐसा संत मोको फिर है मिला, कोई भाई गुरुदा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरुदेव प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आश लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा विच तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने, मन ऐसा न हो करे, ऐसी प्रीत कर ले जिवें मछली ने पानी नाल कर ली, चात्रक ने पबीए ने स्वाति बूंद नाल कर ली है, भंवरे का प्यार फुल दे नाल है, सुगंधी नाल है, जेड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह मेरे मालका, एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल जुड़े।

संसार ते कोई प्राणी एक दूसरे दा कोई एक काज सवार सकदा है, कोई दो कोई तीन कोई दस कोई सौ, मगर सारे कार्य सवारन वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवा जो समर्थ है, जो मेरे सारे कार्य

कत हूँ सुचेत हो के चेतना को चार किया, कत हूँ अचिंत हो के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। पातशाह, साढ़े हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलती है उसनों मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने पाई कन्हैये उते, जिस वेले उसने दुश्मन नू दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं हुई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहो सुन लेहो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दिओ, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दिओ आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आउणगे। ते पहल तूं करनी है, प्यार असां देना है लैणा नहीं। देवे तां ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाइए। ना भाई, वह नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, ते मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी। भावें कोई मोमन वेख रहा है, भावें कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया एक कोई पुकार है केड़ी।

कऊ जच गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहूं भय किन्नर पिशाच कहूं प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कऊ हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब होए के पुराण को पढ़त मत कतहूं

कहूं देवतान के दीवान में विराजमान, कहूं दानवान को गुमान मत देत हो, कहूं इंद्र राजा को मिलत इंद्र पदवी सी, कहूं इंद्र पदवी छिपाए छीन लेत हो।

सूरज में सस में नब में जय हेरो तहां चित लाए तहाई। पावक में अर पवन हूं मैं पृथ्वी तल में सुकहाने जाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाई। व्यापक है सब ही के बिखे कछ पाहन में परमेश्वर नाही। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे।

जगत गुरु बाबा धन धन साहिब गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जगत दे कल्याण करता मनुखता दे हामी दुखियां ते गरीबां नूं हिकड़ी नाल लाउण वाले संसार दी कल्याण करन वाले सतगुरु सच्चे पातशाह सोरठ महला पहला विच कृपा करदे ने।

तू दाता है, तेरे कोल सारियां दाता ने, तू दाता दा मुजस्मा है। पर सोचना तो मैं है भाई मैं मंगा की, हे मालिक मैनू ओ दात दे जड़ी सदा थिर रहे। करता तू मेरा जजुमान, एक दखना हों तै पै मांगू, देवो अपना नाम मैनू अपना नाम दे। ता नाम किदे कोलू मंग रहे ने, जेड़ा जर्रे जर्रे विच रमिया होया है, जेड़ा घट घट रव रहा बनवारी। ता साहिब सच्चे पातशाह दी महान पवित्र बाणी दा ए पवित्र

ब्रह्मा एदियां पत्तियां विच वसदा है। ब्रह्म पापी बिसन डारी विष्णु भगवान डालियां च वसदा है। फूल शंकर दे ओ भोले नाथ शंकर फूलां विच वसदा है।

दरबार विच बैठे साई मियां मीर आया, बेनती कीती गरीब निवाज, आपने जो ए बाणी रची है, तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे। आपने बाणी रची है, तन मन काट काट सब अर्पी, विच अग्नि आप जलाई, ऐसा कौन है जेड़ा अपने शरीर नू अग उपर रख के ते फिर भी परमात्मा दे पाणी विच रवे, फिर भी उसके हुक्म विच रवे। ऐसा कौन है, कृपा करो। सिर्फ ए बाणी मुझ बानी ही उचारी है कि इसके उपर कोई अमल करन वाला भी है। ता गुरु अर्जन देव पातशाह कहन लगे, साई मियां मीर समा आवेगा, ये जो अखर असी लिखे हैं, जो अखर उचारे हैं, इन्हां ते अमल भी करके दसांगे, ते फिर समा आ बने जदों बादशाह जहांगीर दा दीवान चंदू जिसकी लड़की दा रिश्ता लैके लागी हरमंदर साहब आए गुरु हरगोबिंद जी वास्ते, ते लागियां ने जदों गुरु हरगोबिंद जी नूं वेख्या तां आख्या, इस तों सुंदर संसार ते होर कौन हो सकदा है, ते चंदू दीवान दी लड़की वास्ते ए वर सब तों अच्छा है। उन्हां बेनती कीती गुरु अर्जन देव महाराज नूं कि ए लड़का चंदू दीवान दी लड़की वास्ते असी आप पासों मंगदे हां। साहब जी ने क्या अच्छा, जिस वेले लागी सगन दे के गए ते चंदू दीवान नूं जाके आख्या कि असी आप दी लड़की दा रिश्ता गुरु अर्जन देव पातशाह दे सपुत्र गुरु हरगोबिंद जी नाल कर दिता है। तां चंदू दीवान जिसनूं अपने पद दा अहंकार सी कि मैं राजे दा दीवान हां, बड़े गुरु घर वास्ते कुबोल बोलिया कि तुसी ए रिश्ता किथे कर आए हो, मैं किथे राजे दा दीवान और किथे ओ फकीरां दी गद्दी, ए तुसी चंगा नहीं कीता। गुरु घर वाल जदों कुबोल बोले कुबोल बोले ते ए गल संगत नू पता लग गई, तां दिल्ली दी संगत ने चिट्ठी लिखी, गरीब निवाज इस चंदू दीवान दा जो लड़की दा रिश्ता है गुरु हरगोबिंद जी दे नाल नहीं करना, क्योंकि इसने गुरु घर दी वास्ते कुबोल बोले हैं। ते जदों साहब जी ने मना कर दिता तां ए चंदू पापी दे मन विच आया कि ए तां मेरी बड़ी बेदबी कीती है, इन्हां ने गुरु अर्जन देव जी ने मेरा रिश्ता मोड़ दिता, इन्हां नूं अजे नहीं पता कि मैं किस पदवी ते हां ते मैं इन्हां दे नाल की कुछ कर सकदा। तां फिर चंदू दीवान ने छल करके चिट्ठी लिखी गुरु अर्जन देव जी नूं कि आप लाहौर आओ। अंतरजामी गुरु अर्जन देव पातशाह तां सब कुछ जानते सन, जिस वेले चलन लगे हरमंदर साहब तों कुछ प्यार वाले नाल तुर पए। बाबा बुढ़ा जी ने बेनती की, गरीब निवाज किथे तुरे हो? आख्या, बाबा जी लाहौर किसे जरूरी काम नू चले हैं, किसे जरूरी काम नू चले हैं। तां बाबा बुढ़ा जी तां ब्रह्म ज्ञानी सन, जिस वेले नेत्र बंद करके वेख्या के किस काम नू चले हैं साहिब जी, तां की तकिया लाहौर दे विचकार चंदू दीवान दी हवेली विच गुरु अर्जन देव पातशाह तत्ती लोहां ते बैठे हुए। पुब्बां निकलियां बाबे बुढ़े दियां, तां गुरु अर्जन देव जी ने कहा, बाबा जी ए राज राज ही रहन देना, खोलना नहीं। गरीब निवाज चले हो, एक वरा मात गंगा जी नूं तां दर्शन दे जाओ, जो गुरु अर्जन देव जी दी सुपत्नी सन।
ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਭੱਜ ਕੇ ਗਏ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੇ ਹਨ ਲਾਹੌਰ, ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਣਗੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਏ। ਮਾਤ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਭਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਆਏ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੋਹਣਾ ਹੱਥ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।